0: कबहु भिखारी नीच का साजा,
1: कबहु अब कीर्त में आवे,
0: कबहु भला भला कहावे,
1: जो प्रभु राखे तवीर,
0: गुर प्रसाद नानक सच कहे,
1: कबहु

कहते गुरु प्यारी सात संगत सतगुरु ने पार बख्शिश की रहमत की अपना जाप आप करवाया सारिया संगत तहल तो धनवादी है भाई जो भी चल के आए हो सतगुरु मेहर कर आप सारिया की हाजरी दर प्रवान कर आते अपने चरणों ना इस तरह जोड़ी रख सो आओ समा अपने रफ्तार ना जा रहा है 14 दिन ऑलरेडी हो चुके ने कल तो आप बुधवार शुरू किया कल नू बुधवार है सो बड़ी जल्दी समा जा रहा है जे हाजरियां भर रहे हो भाई भागा वाले जिन्होंने अजे नहीं शुरू किया वह भी जरूर शुरू करो अपने को एक महीना बाकी है मत चढ़ के आके सेवा सिमरन करिए अपना जन्म सफला करिए धन्यवादी हाँ हम रहरा साहब के पाठ 6 बजे शुरू होंगे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

तेरे अनेक पड़े भव सिमरत शास्त्र जी, कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी।

सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए, तू कर कर वेखै जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला।

देव को कहत सदाशिव निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तोय तेती। तुमरा लखा न जाहे पसारा कह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कहीं पुपा। अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल अराजा हव बैठा कहूं सिमट पयो संकर इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार आसिख संगर हो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता। जे अस्तुजतव शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबटारे। जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह ऐ है। रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे ने हर हो ताके ताप तनक मैं हर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शवाए सके न कोई। एक बार जन तुम्हें संभारा

सुनेगुंजो याहे स्वरसना पावई, सुने मूढ़चित लाहे चतुरता आवई, दुख दर्द भाव निगटना तिन्नर के रहा, अजो याकी एक बार चापई को कह, चापई संबत सतरा सहसपण जय, अर्ध सहसुंतीन कह जय, भाद्रव सुधी अष्टमी रववारा, तीर्थ द्रव ग्रंथ सुधारा, इत श्री चरित्रो पखियाने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे 405 चरित्र समापतम सत शुभम सत अबजू दोहरा दास जान कर दास पर की जय कृपा अपार आप हाद राख मोहे मान क्रम बचन विचार चौपाई मैना गणेश प्रथम मनाऊ किशन बिशन कबू न त्याऊ

ज्ञान करो प्रतपारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा। दा जानदा हाथ उबारो, हमरे सब बैरियन संगारो। प्रथम तरो भगवत को त्याना, बहुर करो कविता बिदनाना। किशन जथा मच्छर तरो चारो, चूको

शबसकेन कोई सम्मत सत्रह सहस पचावन हाड़बदी प्रथम सुखदावन त्वा प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल भरी लाओ लियो सुधारा दोहरा नेतर तुंके चरण तर सद्रव तीर तरंग श्री

0: इतनी सेवा प्रवान करने जी कीर्तन कर दिया प्रभु माफी बख्शनी। आओ अगला प्रोग्राम पैसा पैसो सर्वण करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा
1: वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवादी हाँ सत्कारयोग ज्ञानी गुरप्रीत सिंह जी, ज्ञानी जगतार सिंह जी और ज्ञानी जगहार सिंह जी जिन्होंने सोदर रहरा सब तो बाद आरती कीर्तन और कीर्तन आप संगतों को बड़ा रस भिन्ना कीर्तन सरवण कराया। इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। आओ हुण मैं बेनती करदा सत्कार जो भाई अगंत सिंह जी जो आप संगतों को कथा दे नाल जोड़नगे। आओ गुरबाणी कथा सरवण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: दुनिया दे लोको मेरी मूरख दी केड़ी गल है, मेरी कोई गल नहीं। मेरा तां जे जेड़ा मनुख गुरु चरणा नाल जुड़ जावे, परमात्मा दे चरणा नाल जुड़ जावे, उसका पार उतारा अकाल पुरख ने करना ही करना है। मैं मूरख की के तक बात है, अपने आप नू किन्ना किस तरह कह रहे ने। कहन लगे कोट परादी तरिया रे, मेरी तां एक जिंद है, एक जिंद दा पार उतारा नहीं करेगा वाहिगुरु जी। कोट अपराधी बहुत वड्डी गिणती है, करोड़ां अपराध करन वाले बंदे। कहन लगे परमात्मा ने उन्हां दा भी पार उतारा कर दिता। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, कहन लगे जिन्हां ने गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन उपदेश नू सुनिया, जिन्हां ने गुरु नानक दे दर्शन किते। हुण जेकर कहीए भाई हुण दे समें च गुरु नानक दे दर्शन करने होण तां फिर किवें करिए। गुरु ग्रंथ साहिब जी कोल बैठ के गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन बाणी सुन लो। अज भी गुरु नानक साहिब जी उपदेश करदे ने। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भासना परे आरे। कहन लगे ओ फिर जन्म मरण दे गेड़ विच नहीं आउंदे, उना दा जन्म मरण दा गेड़ ही मुक जांदा है। सतगुरु जी कृपा करन ये पावन उपदेश साडे सारयां दे हिरदे विच वस जावे, फिर ये लोक सुखीए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मिले, भुल्लां चुक्कां दी खिमा गजाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्रसाद सिंह जी आप जी ने पवित्र बाणी लड़ीवार शब्द विचार सरन करा रहे सन, कथा राही जोड़ रहे सन। भाई अगत अगत सिंह जी, भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम भाई साहब भाई गुरमेल सिंह जी हजूरी रागी साचखंड श्री दरबार साहब जी वाला कीर्तन जथा आप जी ने 8 बजे तक कीर्तन राही जोड़नगे, उपरंत पंथ सत्कार जो कथावाचक भाई साहब भाई पिंद्रपाल सिंह जी आप जी ने 8 to 9 कथा राही जोड़नगे। भाई साहब शुक्रवार तक साढ़े पास हैं, आप जी ने समय सिर सारे दवाना हाजरी भर के लाहे प्राप्त करनी जी। आने वाले शनिश्चरवार धन धन साहब श्री गुरु अमरदास पातशाह जी के प्रकाश दिहाड़े आ रहे हैं। 21 तरीक नीरवार को शाम को अखंड पाठ साहब प्रारंभ हो गए, 23 तरीक शनिश्चरवार को शाम को 4 बजे संपूर्णतावान, 4 to 5 बजे संपूर्णता हो गई, 5 to 6 कीर्तन लगभग हो गए, 6 बजे रहरा साहब जी के पाठ, उपरंत कीर्तन दरबार सजन गए। आप जी ने हाजरी भरनी है जी। आन कीर्तन राय जुड़ना करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

सगल बंदराए फुलंत ज्योति, कैसी आरती होए बहुखन्ना तेरी आरती, अनता शब्द वाजंत पेरी रहाओ। सहस तव नैन नन नैन है तोहि को, सहस मूरत नना एक तोही, सहस पद विमल नन एक पद, गंध बिन सहस तव गंध उचलत मोही। सब मह ज्योत ज्योत है सोए, तिस दे चानन सब मह चानन होए, गुरसाखी ज्योत प्रगट होए, ज्योत इस भावे सो आरती होए। हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो, अंदिनो मोहे आही पियासा, कृपा जल दे नानक सारंको होए, जाते तेरे नाय वासा। रा गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडा हे, पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा हे। कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे, कर डंडोत पुन वड्डा हे रहाओ। साकत हर साधना जानिया, तिन अंतर हव मैं कंडा हे, ज्यो ज्यो चलह चुभ दुख पाव है, जम काल सह सिर डंडा हे। हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण बहु खंडा है, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु सोम खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा है, जन नानक नाम आधार टेक है, हर नाम में ही सुख मंडा है। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो बेनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, ईहा खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सोहेला। औद घटे दिन सरैना रे, मन गुर मिल काज सवारे रहाओ। एहो संसार विकार संसे मह, तरेहो ब्रह्म ज्ञानी, जिस है जगाए पियावे एहो रस, अगत कथा तिन जानी। जाको आए सोई बिहाजो, हर गुरते मनह बसेरा, निज कर महल पाओ सुख सहजे,

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

प्रभु को सिमरे से तनवंते, प्रभु को सिमरे से पतवंते, प्रभु को सिमरे से धन प्रवान, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरे से बेमहताजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा अभिनाशी, सिमरंते लागे जने आव दयाला, नानक जन की मंगेर वाला, प्रभु को सिमरे से पर उपकारी, प्रभु को सिमरे तिन सदबल हारी, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तिन सोग बिहावे,

जय महाप्रयान दूत जम दलत केवल नाम संग तेरा चल जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उदारी अनक पुनः चरण करत नहीं तर हर को नाम कोट पापर हर गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पाव सुख नेरे सगल सिष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया ला करोरी बंद ना पर हर का नाम जपत निस्तरा अनक माया रंग तिखना बुझावे हर का नाम जपत आगावे जे मार्गे जात अकेला त हर नाम संग होत सुहिला

निष्कैया तो समझे पूरा, कहाँ बिसनपत गावे गुंग, जतन करे तो भी सुर पंग, कह पिंगल पर्वत पर पवन, नहीं होत ऊहा उस गवन, करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरह संग।

पात जाए अष्टपदी दस बसुले पाछे पावे एक बस्त कान बिघोड़ गवावे एक पीना दे दस पी हरले तो मूढ़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर से।

का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बटपागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल पर जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मनमा है।

ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्मज्ञानी सत जीव नहीं मरता, ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्मज्ञानी का सब प्रहाथ, ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आवरंकार, ब्रह्मज्ञानी की शोभा, ब्रह्मज्ञानी बने नानक, ब्रह्मज्ञानी सर्व का तनी सलोक, और ताराए ज्वंतर नाम, सर्व में पेखा भगवान, निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार, नानक अपरस सगल निस्तार, अष्टपति मिथ्या नाही रसना वर्ष, मन में प्रीत निरंजन दर्श।

राष्ट्रपति, कई कोट हुए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भये तीर्थवासी, कई कोट भान ब्रह्मे उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धारे, कई कोट कब का विचारे, कई कोट नवतन नाम ध्यावे नानक करते का अंत न पावे, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध ज्ञानी, कई कोट गिरबन कठोर, कई कोट अभिग आत्म ने कोर, कई कोट पर दर्भ को हिरे, कई कोट पर दुख ना करहे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट प्रदेश प्रमाहे, जिद लाभो तिद रगना नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्व उपाय, कई कोट पाथर बिरखन बजाए, कई कोट पवन पाणी बस संतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखियत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सेरे शत्र, सगल समग्री अपना सूत धारे नानक, जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार, कई कोट राजस्थान सत, कई कोट वेद प्राण सिमरतर शास्त्र, कई कोट किए रतन संबंध, कई कोट नाना प्रकार जंद, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जख किनर।

दुख सदा अपवित संगा दुखी किसे का नहीं मिथ संगे दुखी को डान लागे संगे दुखी को सब त्याग संगा दुखी महा अहंकारी संगा दुखी सदा बेकारी संगा दुखी जनमय मरा संगी दुखना सुख ते टरा संगे दुखी को ना ही ठाऊ नानक सन भावेता लय मिलाए संगा दुखी अद बीते टूटा है संगा दुखी कते काज ना पहुंचे संगे दुखी को ध्यान भरमाइए संगा दुखी उजड़ पाइए संगा दुखी अंतर ते थोथा जो सास बिना मृतक की लोथा संगे दुखी की जड़ किश ना है आपन भी जापे ही खाहे संगे दुखी का वर्ण रखनहार नानक सन भावेता लय उभार संगा दुखी एओ मिल लाए जो जल भी हुण मछली तड़फड़ाए संगा दुखी भूखा नहीं राजे जो पावक इंद्र नहीं त्रापै संगा दुखी छुट अकेला जो बुआड़ तिल खेत माए दवेला संगा दुखी धर्म तेरा संगा दुखी सद मिथ्या कहत किरत नंदका तुरही पया नानक जो तिस भावे सोई थिया संगा दुखी बिगड़ू पै जाए संगे दुखी को दरगह मिले सजाए संगा दुखी सदा सहकाइया संगा दुखी ना मरे ना जीवाइया संगे दुखी की पुजे ना आसा संगा दुखी उठ चले निराशा संगा दुखना त्रष्टा कोय जैसा भावे तैसा कोई होय पया कीर्तना मेटा कोय नानक जाने सच्चा सोए सब गढ़ तिसको करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उस्त करो दिन रात से त्याव सास गिरास सब कुछ भरता तिसका किया जैसा करे तैसा गो थिया अपना खे लाभ करने हार दूसर गाउन गाये विचार जिसनू कृपा करे तो सब नाम दे बडभागी नानक जन से सलोक तजो सियान सुर जन सिमरहो हर हर राय वेगा सर मन रखो नानक दुख परम भाओ जाए अष्टपति मानु की टेक वृत्ति सब जान देवन गोय गए भगवान जस गए दिए अगाए भवना दृष्णा लागे आए मारे राखे एक मानु कह सुनाई हाथ तिसका हुकम्बू सुख हो तिसका नावरा कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागा कोए उस

और ब्रह्मान चित आवे सो संसला नहीं डुलावे। जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक को घिसते डराए, जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरुप्रसाद तत्सब बुझिया, जब देखो तब सब किस मूल, नानक सो सुखम सोई असूल। ना कि जन्मे ना किस मरे अपन चलत आप ही कराए, आमन जाम दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी तार सब श्रेष्ठ। आपे आप सगल में आप अनुग युगत रज थाप थाप, अविनाशी नाई कुछ खंड धारण धार्यो ब्रह्मंड। अलख अपे पुरख प्रताप आप जपायता नानक जाप, जिन प्रभु जाता सो शोभा बंत, सगल संसार उदरे तन मंत। प्रभु के सेवक सगल उदार, प्रभु के सेवक धूप सारन, आपे मेल लय कृपाल, गुरु का शब्द जप है निहार। उनकी सेवा सोई लागे सुनो कृपा करे बड़ भाग, नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पर को उत्तम करमान। जो किश कर सो प्रभु कै रंग, सदा सदा बस हर संग। सह सुभाए हो वह सोए, करने हार पछाणे सोए, प्रभु का किया जन मीठ लगाना। जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिसते उपजे तिस माहे समाये, वह सुख निधान उनु बने आए। आपस को आप दिनो मान, नानक प्रभु जन एक हो जान। सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ, बिरसा जानन हार, जाग सिमरन उदरी है, नानक तिस बलिहार। अष्टपति टूटी गांडन हार गोपाल, सर्व जिया पे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन माहे, तिसते बिरथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप, विनाशी प्रभ आपे आप।

जिस प्रसन्न अष्टपति अविनाशी परम मन में राग मानु की तुम प्रीत त्याग तिस्ते परे नहीं किश होए सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर घीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर को बिंद कृपा निदान दयाल बख्शंद सा तेरे की चरणी पाऊं नानक है मन अनुराग मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन परन जाकर नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर अंधरूप मंगल सद जाके सर्व थोक सुनिए कर ताके राज मैं राज जोग मैं जोगी तब मैं तबीसर ग्रस्त मैं भोगी त्याए भगत सुख पाया नानक तिस्पुरगा करे अंत न पाया जाकी लीला कीमत नाहे सगल देव हारे वगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोही अपना सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे जंदा सुनाम ध्यावे से ते गुण में जागो परमाहे जन्म मरै फिर आवे जाए ऊच नीच तिसके आसान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे कर एक रंग नाना बिदगिनो विस्तार प्रभ विनाशी एक अंकार नाना चलत करे खनमाए पूरे पूर्ण सब ठाए नाना बिदकर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब गढ़ तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवै नानक हरनाओ नाम के धारे सगरे जंद नाम के धारे खंड ब्रह्मंड नाम के धारे सिमरत वेद पुराण नाम के धारे स्वर्ण ज्ञान ध्यान नाम के धारे आकाश पाताल नाम के धारे सगल आकार नाम के धारे पुरिया सब पवन नाम के संग उदरे सुन सरावन कर कृपा सपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जानगत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पात सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तसे सब भरी सत नाम ब्रह्म का सुखदाई विश्वास सत नान गुरते पाई सत भजन साधु उपदेश सत जल जाके हृदय प्रवेश सत नृत बुझे जय कोय नाम जब तागी गद होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गात जिसकी सरसो करने हार वरना बूझ करत विचार करते कीमत ना जाने किया नानक जोत सुभावे सो वरतिया बिस्मन बिस्म भय बिस्मा जन बुझा तस आया स्वाद प्रभ के रंग राज रहे गुरु के भजन पदार्थ लहे वे दाते तो काटन हार जाके संग तरा संसार जन का सेवक सो बट पागी जन के संग

राष्ट्रपति संजनाम करो विचार एक सिमर नाम आधार अवृपाव समेत विसारो चरण कमल हृदय में उतारो करण कारण सो प्रभ समराथ दृढ़कर गहो नाम अरवथ एत संचो वो भगवान संजना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्वरोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंट उड़ता में सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख को नित बाचे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा बज हर की सरणी अनुकुपावी रोग ना जाए रोग मिटे हर अब खदलाए सर्व निधान में हर नाम निधान जब नानक दरगे परवान मन प्रबोधो हर कह राय दय दस्तावत आवाठाए तागो बिघन न लागे गोए जागे हृदय बसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाऊ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाव बिनसे पूर्ण आस भगत भयात मृगास तितकर जाए बसे बरासी कहो नान काटी जम्फासी तद विचार कहे जन साचा जन

अरुण पापुंदय पई कहावत कौ नर कौ सुरख मन शावताल जाल माया जंजाल हमे मोह परम व्यापार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान अपन खे राव कर देखे खेल संकोच तौ नानक एक जय अवगत भगत आप जब पसरे पासार संत प्रताप दो भाग आपे तनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कौतक करे आनंद चोज आपे रस भोग निर्जोग जिस भावित सप नाए लावे जिस

आप छोड़ बेनती करहो सासंग अगन सागर तरहो हर धन के परले हो भंडार नानक पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद

संख जाप संख पाव संख पूजा संख तप ताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ संख जोग मन रह उदास

असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह सिर पार होए अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह

है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भजंग प्रयाशंद नमो सर्वमाने समाहति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पावणे अनंगी अनाथे निरसंगी प्रमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे

प्रचान मित गाते अखंड अलिसे कर मदरिसे धर्म सर्वा प्रणाडय अंडर भाडे चाचरी शांत व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे पारे हरि अंग करि अंग निर्नामे कामे प्रजांग प्रयासंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पास है चतर चक्र वास है चतर चक्र मान्य है चतर चक्र दान्य है चाचरी छंद न सत्तर है न मित्र है न परम न पितर है न कर्म न काये जन्म अजाय न चित्तर है न मित्र है परे है पवित्र है

अगाह अटाह अनाथे प्रमाथे अजो नियमोनी नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मं अपर्मं अगंजे लेखे पजांग प्रयाशंद नमाहतर प्रणामे संभाहतर प्रणासे अगंज नामे संभाहतोलने वासे निर्कामं विभुते संभाहतले स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुधर्म

पछोताइए। सत गुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले, कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। अगमे गोचरा तेरा अंत न पाया, अंतो न पाया किने तेरा अपना आप तू जान है। जी जन सब खेल तेरा क्या को आंख बखाने, आखे हिता वेखे सब तू है। जन जगती उपाय कहे नानक तू सदा गम है तेरा अंत न पाया।

चित संयम तोता जाय। मन तो हो शब्द ला गोहर से हो चित लाए, कह नानक गुर प्रसादी सहज उप जाय। इस सहसा में जाय जियो मैले बारो निर्मल, बारो निर्मल जियो ता मैले तनी जन्म जू ऐ हारिया।

फिर आप साजी आपने रचियो नाओ दोई कुतर साजी करा सुन डिठो जाओ दाता करता आप दुस्ते वह करा पसाओ तू जाना सब साजल ऐसा जिन कवाओ करा सुन डिठो जाओ।

की गुरु रामदास रखो शरण आई एक अरदास पाठ की रत की गुरु रामदास रखो शरण आई। धन्न वाहिगुरु।

माटी का क्या धूपै स्वामी मानस की गत एही लिख कथै ना छुट्टी है खन खन भूलन हार बख्शन हार बख्श लै नानक पार उतार सतनाम श्री वाहिगुरु जी।

0: अमृत प्रभ नाम
1: भगत जना के मन विश्राम रहाओ
0: प्रभ के सिमरन गर्भ ना बसे
1: प्रभ के सिमरन दुख जम लसे
0: प्रभ के सिमरन काल पर हरे
1: प्रभ के सिमरन दुश्मन डरे
0: प्रभ सिमरत कछ बिगड़ न लागे
1: प्रभ के सिमरन अंधन जागे
0: प्रभ के सिमरन को ना व्यापे
1: प्रभ के सिमरन दुख ना संतापे
0: सिमरन साध के संग
1: सर्व निधान नानक हर रंग
0: प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ नित
1: प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध
0: प्रभ के सिमरन जप पूजा
1: प्रभ के सिमरन बिनसे दूजा।

0: जय प्रसाद तर ऊपर सुख बस है। जय प्रसाद पीवह शीतल जला
1: सुखदाई पवन पावक मुला।
0: जय प्रसाद भोग सब रसा
1: सगल सामग्री।

0: प्रसाद सुगंधत तन लाभ है,
1: इसको सिमरत परंगत पावे।
0: जय प्रसाद बसह सुख मंदर,
1: इसे ते आए सदा मन अंदर।
0: जय प्रसाद।

0: प्रसाद अश्व हस्त अश्वारी
1: मंत्रेश्वर को कमुनाभ सारी
0: जय प्रसाद बाग मिलख तना
1: राग प्रोई प्रवा प्रेमना
0: जिन तेरी मन बंत बनाई
1: उठत बैठ सत से

0: कई कोण पाथर बिखने बजाए,
1: कई कोण पवन पानी बैसंतर,
0: कई को देश पूर मंडल,
1: कई कोण ससियर सूर्य ने खतर,
0: कई को देव दाल इंद्र सर छतर,
1: सगल समग्री अपने सूत तार,
0: नानक जस जस पावे।